0: कॉमेडीज, रोमांस और एक्शन मूवीज एंजॉय कीजिए। अपने फोन या आईपैड से इसी वक्त साइन अप कीजिए और फ्री में देखिए सिर्फ इरोस नाउ पर।
1: खूब खूब आभार, आज बड़ी खुशी हुई कि हमारे यहाँ खास गेस्ट आए हैं, रजाड़ियों के नए डॉन राम भाई। और आप जानते हैं कि डॉन का मनोरंजन करना हमारा फर्ज है, तो उनके ऑनर की खुशी में एक खास सॉन्ग की पेशकश करूँ।